0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: अरे तक जरा तक,
1: जल्दी से बक, कहता है क्या वो दीवाने।
0: छोरी छोरी छोरिया,
1: जा जा जा छोड़ जा जा जा छोड़ जा जा जा छोड़ जा।

0: तू
1: होश हुए गुम देखा जो मुखड़ा तुम्हारा
0: होश करो तू
1: होश हुए गुम देखा जो मुखड़ा तुम्हारा आशिकों की सुन
0: छोड़ मेरी धुन वैसे ही कर ले
1: गुजारा
0: अरे जा जा जा छोड़ा जा जा जा छोड़ा जा जा जा छोड़ा जा।

0: मैंने कहा आ,
1: मैंने कहा जा,
0: मिलकर बना आ जा। मैंने कहा आ,
1: मैंने कहा जा,
0: मिलकर बना आ जा। मैंने कहा आ,
1: मैंने कहा ना,
0: मैंने सुना आ आ आ चोरी आ आ चोरी आ आ चोरिया।
1: जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा।
0: आ चोरी आ आ चोरिया।
1: जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा।

0: Jala Radio Headlines.
1: Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. In Drapel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. En Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraketsysteem getest als onderdeel van een Europese samenwerkingsproject. En tot zover de headlines op Ujana Radio.
2: एक बार माँ पार्वती लक्ष्मी जी के घर जाती हैं और वहां देखती हैं कि लक्ष्मी जी के पास बहुत सुंदर महल है। उनके मन में भी आता है कि मैं भी अपने भोलेनाथ से कहकर उनसे भी सुंदर महल बनवाऊंगी। पार्वती जी भोलेनाथ से कहती हैं कि स्वामी मेरे लिए भी एक सुंदर सा महल बनवा दो, मैंने लक्ष्मी जी को नीचा दिखाना है। भोलेनाथ समझ जाते हैं, कहते हैं हम तो सन्यासी हैं, हमारा महलों से क्या काम। लेकिन पार्वती जिद करती हैं और उनके जिद पर एक सोने का सुंदर सा महल भोले बाबा बनाते हैं। पार्वती के गृह प्रवेश पर सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया जाता है, यज्ञ करवाया जाता है। उसी यज्ञ में रावण के पिता ऋषि विश्वा भी अपने पुत्र रावण को लेकर यज्ञ में आते हैं और यज्ञ पूर्ण करवाते हैं। पार्वती जी खुश होकर दक्षिणा मांगने को कहती हैं। इस पर रावण दक्षिणा में वही महल मांग लेते हैं और भोले बाबा उनको वही महल दे देते हैं। पार्वती बड़ी दुखी होती हैं। भोले बाबा के समझाने पर फिर दोनों कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। तो भक्तों, ऐसे ओघड़दानी हैं हमारे भोले बाबा। आइए उनका ये भजन।

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने है तो।
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekend.

उजाला रेडियो का प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं। सुनने वालों, इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा आप देखें वेबसाइट पर www.ujala.nl। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए भी ताड़ाप कर सकते हैं दफ्तर के समय तहदिंस कांतोर उरन 020 409 08।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

0: उजालास सोना चिरैया
1: ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। मैं हूं सुभाष सिंह गोविंद और जहां तक ये आवाज पहुंच रहा है वहां तक हम आप सभी को बहुत ही प्यार से, दुलार से, दिलो जान से स्वागत कर रहा हूं। चाहे जहां पर आप यू आर का प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, चाहे जहां पर आप सुनते होंगे, वेलकम। उजाला रेडियो का दफ्तर का तारक नंबर है 9204090807 और स्टूडियो का तारक नंबर है 9203603 0808।

बेल, आज उनसे पहली मुलाकात होगी। और इसी तरह से किशोर कुमार की आवाज में आप लोग सुने और फिल्म का नाम पराया धन। स्टेशन है उजाला रेडियो।

अंदाज अपना अपना फिल्म का नाम। अन्य की बार जो गाना प्रोग्राम में हमने तैयार किए हैं, गाने वाले होंगे देखा जाए कैलाश खेर जी के आवाज में गाना जो आप लोग सुनेंगे।

कैलाश खेर की आवाज में आप लोग सुनिए तू जाने ना, तू जाने ना। रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं दोस्तों, आमस्टरडम शहर से प्रोग्राम को बनाया जा रहा है। अब की बार जो गाना प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे खूबसूरत सा गीत होंगे, कुमार शानू एना शाह जी

हाँ यार, तुझे प्यार करने से मेरी किस्मत बदल गई। कुमार शानू एंड आशा जी के आवाज़ में

उसी तरह से लता जी एंड किशोर कुमार की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे दोस्तों, उजाला रेडियो पर 020-363-0808 स्टूडियो का तारक नंबर है। एंड इस बार कविता कृष्णमूर्ति एंड अभिजीत

गले लग जा। कविता कृष्णमूर्ति एंड अभिजीत के वंश में ये शानदार से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, उजाला

वेल यार, तुमसे मिलकर अब ना होंगे जुदा। आशा जी एंड सुरेश वर्कर की आवाज में आप लोग सुने, और फिल्म का नाम परिंदा, स्टेशन है उजाला रेडियो। मैं हूं आपका दोस्त सुभाष। सोनू निगम एंड अनुराधा पौडवाल

ओए, ये तूने क्या कहा? सोनू निगम एंड ननु राधा पालवल के अवांश में आप लोग सुने आवारा पागल दीवाना।

तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर प्रोग्राम में ला रहा हूँ कैलाश खेर को, और इस तरह से आप लोग सुनेंगे और गाना पेश है

0: जानास सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया
1: नोइंग दैट आई एम ऑन द स्टेज टुडे आई कुड नॉट हैव नॉट डन दिस दिस इज माय वेरी वेरी हम्बल ट्रिब्यूट टू माय गुरु टू आवर बिलवड टू मां सरस्वती हरसेल्फ लता मंगेशकर जी.

होई होई के कुड़िया शेर दिया दिलेर मेहंदी नेहा कक्कर एंड तानिश बागजी से आप इस गीत को सुने एंड अगला गीत लंबोर्गिनी।

लंबोर्गिनी। हाँ, मोई गाना लंबोर्गिनी के तबला रीमिक्स आप सुने, मोई लगे है तो। तब एगो और पेश है लाल घगड़ा गीत का बोल, उजाला रेडियो पर।

0: Zona Chiria.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: ये उजाला रेडियो है जहां गीतों के साथ आपके रात और दिन खूबसूरत बन जाते हैं।

नैया नैया के खिवैया कन कन में राम, कन कन में राम, त्रिभुवन में राम,

0: उजाला सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया।
1: ये है उजाला रेडियो, रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, de spits komt verder op gang. Er staat intussen al 400 kilometer file. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Badhoevedorp en Hoofddorp heb je door een ongeluk een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A5 loopt het ook vast van Amsterdam naar Hoofddorp voor knooppunt De Hoek. Daar heb je nu een half uur tijdverlies. En op de A4, maar dan van Amsterdam naar Rotterdam, sta je tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid nog eens 20 minuten in de file. Verder staat het vast op de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwerkerk aan de IJssel. Door rommel op de weg zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is ruim een half uur. Je kunt ook omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आज़ादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और जिस शौक से आप आज़ादी का जश्न मनाने यहाँ आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आज़ादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

या बादल पागल है दोनों खुल के बरसे भीगे आजरा या मेंस से वोल्के एंड वार से कोम बेट्रेक्ट द लुख्त. फिल्म का नाम है एनिमल uit het jaar 2023 और गाना का नाम है पहले भी मैं met onder andere in de hoofdrol Ranbir Kapoor. En dit is Suno uit de film The Archies.

या कितना हसी है ये एक सपना, फूलों के शहर में, फूलों के शहर में है घर अपना, मैन हाउस लिख्ट इन द स्टाद फान ब्लूमे. या हू मोय इज देज़ ड्रोम वेल नीट. या इन ये ड्रोमे एन ओक इन द लीफ्दे इज नीट्स अनमोगलिक. सब चीज मोगलिक है, अल्लस व्हाट यू मार कान बेडेंके. Ujala Radio, hey, Sunwalo, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Zorg ervoor dat je geniet van deze prachtige mooie dag. En doe dat niet alleen vandaag, doe dat morgen ook. En doe dat ten alle tijden met Ujala Radio aan jouw zijde. Voor de

क्यों ना अब मिले रोज हम आई मिस यू एवरी डे. यह फिल्म का नाम है क्या लव स्टोरी है एंड दिट वाज द सेम वन शान एंड uitgebracht in het jaar 2007. Ja, het is tijd voor de stem van Benny Dayal. Uit de film Hangama 2, organica naam he, Pehli Baar. Ja, die eerste keer. De eerste keer dat je ons hoorde op Ujala Radio. Of de eerste keer dat je je geliefde ontmoette.

कहंदी हाँ कहंदी ना यार इस टाइम फांसू कृति कक्कर प्रकृति कक्कर एंड अर्जुन बिलियानी यहाँ हेलके गाना हियर सो बाय उजाला रेडियो एक से एक मोई मोई गाना खूबसूरत गाना एंड टुसडोर ओक एन बीटे धमाका गाना टोख गाना ओम लेकर फान ते गेनीते एंड गाना ओम लेकर ओप ते स्विंगे. Geniet lekker van de mooiste hits en geniet lekker samen, zaad in zaad. Met je geliefde, met je vrienden, met je kinderen of met je collega's. Want Ujala Radio is van jou, maar niet alleen van jou toch? Ujala is om te delen. Gana kanam he Dil Melkarda. De stem van Hazin Dilrowa.

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: You Are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला .net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

नाना नानी दादा दादी काका काकी मामा मामी फुआ फुफा बहन और ए भाई तो भी सुने है तो उजाला रेडियो।

0: ना ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना, अरे ना ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना। प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे ना ना ना ना ना ना ना ना।
1: मैं लड्डू बोल लड्डू
0: लड्डू
1: लड्डू लड्डू लड्डू
0: लड्डू ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। एक नजर है एक हंसी है कीमत किसकी बंधु, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, इनको लेकर बांधे लड्डू खाए दास कबीरा। रे पर देखो देखो आहा आहा, रे पर देखो देखो आहा, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू।
2: अबे हट, खाली जिसका पेट उसका प्यार से खाली बोल, और इस लड्डू में दुनिया का हर ऐश दिया है घोल। सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल। सोने का लड्डू
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: प्यार का लड्डू,
2: सोने का लड्डू,
0: प्यार का लड्डू,
2: प्यार
0: प्यार प्यार।

उजान रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओतु में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो